पहले थी भैरम पर हटो, पहले थी भैरम पर हटो, पहले थी भैरम पर हटो, पहले थी भैरम पर हटो, पहले थी भैरम पर हटो, पहले थी भैरम पर हटो, पहले थी भैरम।

0: कोमल अंगत भूल चढ़ंगत नकली चालक माया को चालक सत कमल
1: मैले सिफाइर पर मैले सिफाइर पर।

0: विपद का घटना में 35 जना जान गुमाए। बागलुंग पर्वत जोड़ने मानलुंग पुल को मरम्मत थालियो। देश का धेरै ठाउँ को मौसम सफा। आज हिमालय पहाड़ी थोड़े ठाव में हल्का वर्षा होने। फेरी ठूल पानी पर्ने हल्ला को पछि नलाग्न र आधिकारिक सूचना को भर पर्न आग्रह। ट्रम्प प्रशासनलाई तेस्रो देश में आप्रवासी पठाउन सर्वोच्च अदालत द्वारा अनुमति। तल्लो अदालत को आदेश कार्यान्वयन में रोक। आर्थिक नियम उल्लंघन को आरोप में दोषी ठहर भएको मैनचेस्टर सिटी अपील में जाने।
1: एनडीएल सर्वसुलभ आवास कर्जा
2: अब बन्छ सबैको सपनाको घर, किनकि हामीसँग छ सर्वाधिक न्यून ब्याज दर।
1: परिवर्तनीय ब्याज दरमा 4.91% वा स्थिर ब्याज दरमा 5.99%।
2: विशेषताहरू 3 करोड़सम्मको कर्जा सुविधा।
1: घर तथा अपार्टमेन्ट खरिद, घर निर्माण तथा मरमत सम्हार गर्न
2: 25 वर्षसम्मको लचिलो कर्जा अवधि।
1: न्यून सेवा शुल्क, न्यून ब्याज दर,
2: सम्पूर्ण शाखाबाट कर्जा प्रवाह।
1: थप जानकारीको लागि आजै आफ्नो नजिकैको शाखा कार्यालय वा कल सेन्टर 01-597-1222 सम्पर्क गर्नुहोस्। शर्तहरू लागू हुनेछन्।
3: समय सँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक।

थप जानकारी का लागि कार्यालय को संपर्क नंबर 0835130 मा 9869 4545 76 मा संपर्क गर्न सक्नुहुनेछ। परमेश्वर चमार बाली संरक्षण अधिकृत कृषि ज्ञान केन्द्र सोलुखुम्बु।

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: स्टूडियो टाइम
0: 7 PM
3: टाइम चेक को साथमा न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय अफसेट प्रेस सोलुदूत को नगरपालिका 5 सोलुखुम्बु।